0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार स्वागत है फिर से एक नए शो में, एक नई शाम में और एक नए अंदाज में. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राज के वुरुंजुरी और वुई वुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. आज के शो की पहली रिपोर्ट है जिसमें हम बात करेंगे बढ़ती लागत के बीच ऑस्ट्रेलिया के 27 लाख छोटे व्यवसाय पर पड़ रहे दबाव की, खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर. आने वाले फेडरल बजट में जो आशाम आने वाला है उससे राहत की भी उम्मीद कई लोगों की छुड़ी हुई है. उसके बाद बात होगी एंटी सेमिटिज्म और सोशल कोहिजन पर रॉयल कमीशन की हियरिंग्स की, जहाँ जूश समुदाय के अनुभव सामने आए हैं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी अपनी आवाज़ अब उठा रहे हैं. फिर मेलबर्न के रोविल में महात्मा गांधी की मूर्ति की चोरी के बाद जो इस साल के शुरुआत में हुआ था, यह हादसा कैसे उस हादसे के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार ने अपनी 40 साल पुरानी मूर्ति दान करके एक संदेश दिया है. और अंत में एक प्रेरणादायक कहानी फैसल फरीद की, पश्चिम बंगाल के मनीष डे के बारे में आज बात करेंगे जिन्होंने स्वयं ही सीखी हुई एनिमेशन से एक सीरीज़ बनाई है जो काफ़ी पसंद की जा रही है. अब वो अपनी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश जिसमें आज मंगलवार 12 मई की खास खबरें हैं आपके लिए.

0: न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी हिस्से में स्थित जर्विस बे एयरफील्ड पर पैराशूटिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की मौत हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पुष्टि की है कि यह हादसा कल रात हुआ, हालांकि सैनिक की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस घटना में एक अन्य सैनिक भी घायल हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। यह हादसा पिछले कुछ वर्षों में ट्रेनिंग के दौरान हुई कई अन्य दुर्घटनाओं की श्रृंखला में एक और घटना है, जिसमें अक्टूबर 2025 में टाउन्सविल फील्ड ट्रेनिंग एरिया में हुए सिंगल व्हीकल रोलओवर हादसे में लैंस कॉर्पोरल टुलसा रमनी की मौत भी शामिल है। फेडरल बजट का बॉटम लाइन आने वाले वर्षों में लगभग $44.9 बिलियन बेहतर होने का अनुमान है। ट्रेजरर जिम चार्मर्स आज रात 7:30 बजे AEST यानी ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार अपना 5वां फेडरल बजट पेश करेंगे, जिसमें युवा ऑस्ट्रेलियंस के लिए हाउसिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा। हालांकि जिम चार्मर्स ने पुष्टि की है कि अगले 4 वर्षों की बजट अवधि में किसी भी साल बजट सरप्लस में वापस नहीं जाएगा, लेकिन दिसंबर के मिड ईयर अपडेट की तुलना में हर साल घाटा यानी डेफिसिट कम होने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि हायर टैक्स रेवेन्यू के कारण फेडरल बजट के बॉटम लाइन में बड़ा सुधार होगा। इसका एक कारण ईरान में जारी जंग भी माना जा रहा है। फेडरल ट्रेजरर जिम चार्मर्स ने आने वाले बजट को लेबर सरकार का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी बजट बताया है, जिसमें सामान्य से अधिक बचत और सुधार शामिल होंगे। जिम चार्मर्स के अनुसार ये बजट 5 बड़े पैकेज पेश करेगा, जो ईंधन सुरक्षा, जीवन यापन की लागत, आवास उत्पादकता, कर सुधार और बचत से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध सरकार को कर सुधारों यानी टैक्स रिफॉर्म्स के तहत कुछ कठिन फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फेडरल बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स डिस्काउंट में बदलाव भी शामिल हो सकता है। लेबर ने 2025 के फेडरल चुनाव अभियान के दौरान इस टैक्स में किसी तरह के बदलाव का वादा नहीं किया था। जिम चार्मर्स ने कहा है कि समय बदल गया है। हैंटा वायरस प्रकोप से प्रभावित एक क्रूज शिप पर सवार 4 ऑस्ट्रेलियाई लोग अब नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो फिलहाल मेडिकल असेसमेंट से गुजर रहे हैं, जिसके बाद इस सप्ताह के अंत में वो पर्थ के लिए रवाना होंगे। वहां उन्हें 3 सप्ताह तक एक क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाएगा। MV हॉन्डियस जहाज पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यात्रियों के अपने अपने देशों में लौटने के साथ और मामलों की पुष्टि भी हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 3 दिन के सीज़फायर के बावजूद रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर उस सीज़फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया का युद्ध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो एड्रेस में कहा कि कीव को रशिया की ओर से और हमलों की आशंका है, और उन्होंने पुतिन के दावों को खारिज किया। अब खबर भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव बना हुआ है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत, इंपोर्ट्स और सोने की खरीद में कमी की अपील की है। इन घोषणाओं के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई, जबकि रुपी रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब बढ़ते हैं शो की पहली रिपोर्ट की तरफ। आज की जो पहली रिपोर्ट है वो तेजी से बढ़ती लागतों ने ऑस्ट्रेलिया के 27 लाख छोटे व्यवसायों पर दबाव बढ़ा दिया है, उसी से जुड़ी हुई है। खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर ये दबाव महसूस हो रहा है, जहां किराया, मजदूरी और बिल लगातार बढ़ रहे हैं। सिडनी के रेस्टोरेंट मालिक जावेद खान का कहना है कि अब सरकार से ठोस मदद की जरूरत है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट भव्या पांडे के साथ।
1: दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 27 लाख छोटे व्यवसाय यानी स्मॉल बिजनेसेस बढ़ती लागत के दबाव में संघर्ष कर रहे हैं, खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ऐसे में सवाल है कि मई में आने वाला फेडरल बजट छोटे कारोबारियों को राहत दे सकेगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और इस अंश में हम बातचीत करेंगे कुछ स्मॉल बिजनेस ओनर्स से और जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में वे किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 40 सालों से बिजनेस की दुनिया में सक्रिय कैफे मालिक एंजेला विथुलकस ने कारोबार में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मौजूदा हालत बेहद चुनौतीपूर्ण है।
2: So I've got to work twice as hard now than I ever used to. I am here from 4:30 in the morning until about 5 p.m. 6 days a week.
1: पूर्व राजनेता और अवार्ड विनिंग बिजनेस वुमन एंजेला एक छोटे व्यवसायी परिवार में पली बढ़ी हैं।
2: I'm the daughter of migrant parents who first came to Australia in the 50s and 60s. They were small business owners as well, so that's where I learnt how to always step up for a challenge. And I think that unique perspective of people who couldn't speak English and didn't have a business background but saw an opportunity, I think that's what I inherited more than anything else.
1: उनका 18वां बिजनेस वेंचर स्मॉल डोजेस कैफे, जो सिडनी के सेंट लियोनार्ड्स के मेडिकल प्रीसिंक्ट में स्थित है, आज भी उनके भाई कॉन के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप में चल रहा है।
2: We've always been in business together. I wouldn't do this work and this business without him.
1: भाई के साथ होने के बावजूद इतनी अनुभवी कारोबारी के लिए भी मुनाफा कमाना मुश्किल होता जा रहा है।
2: In the last 15 months that I've been in a new business, I've seen almost 18% increases across everything that we do on average. So that's product, that's outgoing expenses. Power for us is going up $500 a month. I've tried everything to save power.
1: इसके बावजूद एंजेला अपने ग्राहकों पर कीमतों का बोझ डालने से हिचक रही हैं। उनके रेगुलर कस्टमर तुल्फी हादी बताते हैं,
3: I think people do expect prices of things like coffees to go up in line with interest rate rises, inflation, global conflicts, fuel supply shortages. However, these guys have been really good keeping the prices stable, so I'm here every day.
1: इस हफ्ते ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी ऑस्ट्रेलिया के 27 लाख छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई है, क्योंकि कई कारोबारी पहले से भारी बिजनेस लोन का बोझ उठा रहे हैं। क्रेडिटर वॉच के मुख्य अर्थशास्त्री इवान काहून बताते हैं,
4: Two of the key drivers of insolvency are energy prices and interest rates. So when you think about that, both of those are moving in the wrong direction at the present time. We've seen interest rates rising again this week, and obviously we've got much higher energy prices. So that combination is likely to result in higher insolvencies.
1: ऑस्ट्रेलिया का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर बिजनेस फेलियर का सामना कर रहा है। मुनाफा ना कमाने की श्रेणी में ये सेक्टर सबसे आगे है, जहां लगभग हर 10 में से एक फूड और बेवरेज बिजनेस ठप हो रहा है। सिडनी के एक रेस्टोरेंट ओनर जावेद खान SBS हिंदी को बताते हैं कि किस तरह से बढ़ती जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग ने स्मॉल बिजनेसेस का चलना मुश्किल कर दिया है।
5: See, to start with, I think the pressure is really mounting high more than ever. I think अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जो चल रहा था इस देश में, उससे भी कहीं ज्यादा प्रेशर आज लोग उठा रहे हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स में। सेक्टर्स इंक्लूड्स आल्सो हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। छोटे बिजनेसेस जो है, मेजोरिटीज ऑफ द छोटे बिजनेस इफ यू सी आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन दीज 5 सेक्टर्स, एज आई सेड, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज। जैसी जब भी कोई रेट्स बढ़ता है, आपको तुरंत नजर आता है इफेक्ट इसका टिल पे फॉर दिस स्मॉल ऑपरेटर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। लोग जो है, उनकी जो नीड्स है, डेफिनेटली वो क्या करते हैं कि उनको यस खाना है, बट दे रेस्टोरेंट्स में नहीं जाके खाते, टेकवे मंगा लेते हैं। वो ग्रोसरी स्टोर से ले आके खाना बना के खा लेते हैं बेसिकली। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इवन पर्सनल नीड्स फॉर एग्जाम्पल, वहां भी लोगों का जो बचत शुरू हो जाता है, उनको कुछ ना कुछ करना है। जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा हुआ है, उनको कुछ ना कुछ करना है, किसी तरह से बजट मैनेज करना है उनको, बाय कटिंग डाउन ऑल दिस एक्स्ट्रावेगेंट थिंग्स, अगर आप कह ले, व्हिच डायरेक्टली इंपैक्ट्स द स्मॉल बिजनेसेस।
1: कारोबारियों को राहत देने के लिए अगले हफ्ते के फेडरल बजट में इंस्टेंट एसेट राइट ऑफ स्कीम को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस योजना के तहत योग्य खरीदार पर $20,000 तक की टैक्स कटौती मिल सकती है।
4: What we are seeing is some increase in credit inquiries, particularly in about food and beverage companies. So credit managers are worrying about that sector.
1: Council of Small Business Organization Australia yani COSBOA ki CEO Sky Kapoorji kehti hain,
6: Instant asset write-off is a proven measure to support small business to invest in their own growth. We are looking for the government to make it permanent so that small business has the opportunity to plan ahead to effectively utilise it, but also to increase it. So the amount that you are able to write off is actually relevant to the amount small businesses really need to invest in things like a new vehicle or an upgrade to manufacturing equipment. So we're calling on the government to make the instant asset write-off permanent and increase it to what it was in 2021, which was 150,000.
1: हालांकि स्मॉल बिजनेसेस के समर्थकों का कहना है कि इन सेक्टर्स को उचित पहचान और समर्थन मिलना चाहिए।
6: There are 2.7 million small businesses in Australia and they're employing over 5 million people. Collectively, they make up nearly a third of GDP.
2: Australia has been built on the back of small business. Investing in us as small business owners is investing in Australia's future. Ignoring us, we'll see more unemployment, we'll see less prosperity.
1: ऐसे में जावेद खान बताते हैं कि उनके जैसे कई स्मॉल बिजनेस ओनर्स आने वाले बजट से किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं।
5: See, सरकार की तरफ से सबसे बड़ा इस देश में अगर चैलेंज है, मैं पर्सनली बता सकता हूँ, बिलोंगिंग टू दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आई जो मेरे जो कनेक्शंस में है और बाकी रिटेल्स भी हैं, फ्रेंड्स जो रिटेल चला रहे होते हैं, बहुत से फ्रेंड्स रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं, ग्रोसरी स्टोर चला रहे होते हैं, वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? ऑफकोर्स डेफिनेटली नंबर वन, इसकी क्या किसी तरह से जैसे कोविड में उन लोगों ने एक सहायता शुरू किया था स्मॉल बिजनेस को, सहायता किसी तरह से शुरू किया जाए। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी और गैस आप देख रहे हैं, इट्स ऑल डायरेक्टली इंपैक्टिंग। रेंट का सहायता अगर मिले कोविड के टाइम, अगर कोविड के टाइम में किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि आई एम श्योर इस समय भी किया जा सकता है, स्पेशली इन स्मॉल बिजनेसेस को के लिए। इनफैक्ट इवन उनके लिए अगर किसी बैंक के थ्रू से लेसर इंटरेस्ट रेट्स पे या गवर्नमेंट फंडिंग, बड़े बड़े बड़े बड़े कंपनीज या बिग कंपनीज को उनको गवर्नमेंट हमेशा जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होता है दे जंप इन, ऑफ कोर्स दे से नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज दे हैव गॉट मेजॉरिटी, लेट्स से दे विल हैव 200-300 स्टाफ, सो दे विल जंप इन टू सपोर्ट देम सो दे कैन हैव एन इंपैक्ट ऑफ 200-300 स्टाफ फॉर नॉट लूजिंग द जॉब्स। छोटे बिजनेस एक पांच छह के एम्प्लॉय को, एक पांच छह स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं, बट अगर इफ यू पिक अप 10-15 businesses of same or similar sectors, they will be employing more than 300 people. Government ek badi company ke corporates ko de dete hain paisa, but smaller businesses ko kabhi nahi dete hain paisa. So that's again a inconsistency in government approach, I would say. Shukriya, thank you so much everyone. And please go and support your local businesses if I may say.
1: आपको बता दूं कि इस अंश में प्रस्तुत किए गए सभी विचार व्यक्तिगत हैं। SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। SBS न्यूज के लिए सांड्रा फुलून की स्मॉल बिजनेस सीक्रेट्स के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
7: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो। देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
8: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
7: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
9: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताज़ा खबरें, विचार और कहानियाँ SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
10: I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
11: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील। और आगे पढ़ने से पहले आज का सवाल ये है कि ख़ासकर जब भारतीय लोग, जब इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी अकेलापन महसूस होता है, और कुछ करने के लिए कुछ ना कोई हैबिट जो है या कोई कम्युनिटी एक्टिविटी जो है वो हम सब ज्वाइन करते हैं। एक कोई ऐसा हॉबी क्या है जो आपने भी यहाँ आकर अपनाई? वो हो सकता है स्विमिंग सीखना हो, ट्रैकिंग पे जाना हो, या फिर कुछ और। 04397777 पर शेयर करिए अपने आइडियाज़ कि आपने क्या करा, और हो सकता है जो नए माइग्रेंट्स आए हैं, जो नए प्रवासी हैं, उनको इस आइडिया भी मिले कि क्या करना चाहिए और अपने आप को कैसे बिजी रखना चाहिए। और उम्र कोई भी हो, यहाँ अगर देखा जाए तो कई लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ ज़रूर करते हैं। चलिए जब तक आपके जवाब आते हैं 04397977 पर हम आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो है एंटी सेमिटिज्म और सोशल कोहिजन पर बनी रॉयल कमीशन से जुड़ी है। इनकी सुनवाइयों में यहूदी समुदाय के अनुभव सामने आए हैं। अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की मांग है कि उनके अनुभवों को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। इस मुद्दे पर क्या है पूरा मामला, और विशेषज्ञों की क्या राय है? आइए सुनते हैं वृशाली जैन की इस रिपोर्ट में।

0: एंटीसेमिटिज्म और सामाजिक एकता पर रॉयल कमीशन की सार्वजनिक सुनवाई के पहले दो दिनों में 24 गवाहों ने अपने अनुभव साझा किए। ये सभी यहूदी ऑस्ट्रेलियाई हैं जिन्होंने एंटीसेमिटिज्म का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हालांकि इस रॉयल कमीशन को लेकर समुदाय में व्यापक समर्थन है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका दायरा बढ़ाकर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम और फर्स्ट नेशंस ऑस्ट्रेलियाइयों के खिलाफ हो रहे नस्लवाद से जुड़े अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं वृषाली जैन और वाइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को विस्तार से। शीना गुटनिक एक यहूदी ऑस्ट्रेलियाई हैं जिन्होंने 14 दिसंबर 2025 को हनुका समारोह के दौरान हुए बॉन्डाई हमले में अपने पिता यूर्वेन मॉरिसन को खो दिया। वे एंटीसेमिटिज्म और सामाजिक एकता पर रॉयल कमीशन यानी द रॉयल कमीशन ऑन एंटीसेमिटिज्म एंड सोशल कोहेजन की सुनवाई के पहले दिन गवाही देने वाले 12 गवाहों में शामिल थीं।
1: Bondi holds many complicated and conflicting feelings for me currently. It was somewhere where my parents had started their history together, somewhere I had spent many days of my childhood, I have beautiful memories there with my family. I had actually spent a lot of time there with my children, myself, in during school holidays. And now Bondi holds a really, really heavy weight in our community's heart.
0: ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले में शीना के पिता उन 15 लोगों में शामिल थे जिनकी जान गई। इस सामूहिक गोलीबारी के बाद रॉयल कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट 30 अप्रैल को जारी की गई। रिपोर्ट में कॉमनवेल्थ, राज्य और क्षेत्रीय सरकारों के लिए कुल 14 सिफारिशें जारी की गई जिनमें सुरक्षा और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के सुझाव शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल को फेडरल सरकार से जुड़ी सभी सिफारिशों को स्वीकार करने पर सहमति जताई और कहा कि वे राज्यों और क्षेत्रों के साथ मिलकर देश भर में एक समान बंदूक कानून लागू करने पर काम करेंगे।
2: It will be up to state and territories, of course, will have to give consideration to the very clear recommendations. There are two of the recommendations make it clear that we should progress with nationally consistent gun reform. I certainly hope that that occurs and would continue to engage constructively with state and territory governments to say that this is reform which is necessary.
0: इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व हाई कोर्ट जज वर्जीनिया बेल कर रही हैं। पहली सार्वजनिक सुनवाई के अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय के लोगों के प्रत्यक्ष अनुभवों को सुनना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य पूर्व में हो रहे संघर्षों और घटनाओं के चलते ऑस्ट्रेलिया सहित कई पश्चिमी देशों में एंटीसेमिटिज्म के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं शीना का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई समाज में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म से निपटने के लिए शुरुआती स्तर पर शिक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है।
1: एजुकेशन अराउंड एंटीसेमिटिज्म, Jewish identity and real world consequences of hatred should be embedded early before hateful attitudes are formed and normalized. This should include building critical thinking skills so that students are better equipped to assess information, question sources and recognize misinformation. I'd like to add, I think that is incredibly important given the rise of social media and misinformation that is very easily presented as fact.
0: एक अन्य गवाह जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए AAL नाम अपनाया ने अपनी पोती के साथ कक्षा में हुई एक घटना का वर्णन किया।
3: She was in the class when I believe a substitute English teacher was giving a lecture about a book totally unrelated to Israel or Palestinian issues. And for some reason this teacher performed several Heil Hitler salutes. My granddaughter was 13, 14 at the stage, left the classroom, was deeply shocked, wrote a very polite email to the principal as well as to her mother.
0: गवाह ने आगे बताया कि इस घटना के बाद उनकी पोती ने स्कूल बदल लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई गंभीर कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में जब वे दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया आए थे तब जिस देश से उन्हें प्रेम हुआ था आज का ऑस्ट्रेलिया वैसा नहीं है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने पोते पोतियों के लिए ये देश पहले जैसा सुरक्षित नहीं लगता। सिडनी के माउंट सिनाई कॉलेज की बोर्ड अध्यक्ष सुश्री श्वार्ट्ज ने भी कहा कि उन्होंने छात्रों और अभिभावकों के बीच एंटीसेमिटिज्म और उससे पैदा हुए डर में बढ़ोतरी देखी। उन्होंने 30 जनवरी 2025 की एक घटना को याद किया जिसमें स्कूल को एंटीसेमिटिज्म ग्राफिटी हमले का निशाना बनाया गया था। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि यह हमला साफ तौर पर छात्रों को नए सत्र के पहले दिन डराने धमकाने के उद्देश्य से किया गया था।
4: We obviously wanted to cover it up as soon as possible, but we couldn't because the police were there and treating it as a crime scene. And I remember seeing a photo of another local student, not Jewish, looking at these words on our school gates and going home. Sorry, and having to ask his parents about Jew dogs and Jews terrorists. And of course, I was devastated for my own children, but also for these Aussie kids growing up in an environment where this was normal and this was happening.
0: सुनवाई में एंटीसेमिटिज्म की वही परिभाषा अपनाई जा रही है जो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस द्वारा दी गई। इस परिभाषा के अनुसार एंटीसेमिटिज्म यहूदियों के प्रति एक विशेष धारणा है जो उनके प्रति घृणा के रूप में व्यक्त हो सकती है। जज विर्जीनिया बेल ने कहा कि इस परिभाषा का उपयोग हर मामले के आधार पर किया जाएगा ताकि ये तय किया जा सके कि सामने आए घटनाक्रम और अनुभव एंटीसेमिटिज्म की श्रेणी में आते भी हैं या नहीं। वहीं लट्रोब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर फेलो डेनिस ऑल्ट उनका कहना है कि वे इस परिभाषा से सहमत हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े उदाहरणों से सहमति नहीं रखते।
5: In the examples, it is said that it is anti-Semitic to call Israel a racist society. On the other hand, you can hardly go to an anti-Australia Day demonstration here without people saying Australia is racist. There is something ironic that nobody says we should punish Australians for saying our country is racist, but somehow if we wanted to call another country, a foreign country, racist, that is wrong. Equally, it should be possible to talk about potential solutions for the impasse between Israel and Palestine that envisages a redoing, a creation of a secular democratic one state. Now, that isn't necessarily a position I want to argue for here. What I want to argue for is the right of people to say that, and that is being shut down.
0: प्रोफेसर ऑल्टमैन का कहना है कि एक यहूदी ऑस्ट्रेलिया होने के साथ साथ जो होमोफोबिया का सामना कर रहे हैं, उन्होंने आयोग में अपना बयान इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि उनके अनुसार ये जरूरी था कि ऐसे यहूदी दृष्टिकोण भी सामने आए जो प्रमुख यहूदी संगठनों द्वारा व्यक्त विचारों से अलग हो। उनका कहना रहा कि इसका मतलब ये भी है कि आयोग में मुस्लिम और फर्स्ट नेशंस ऑस्ट्रेलियाई समुदायों के दृष्टिकोण भी शामिल किए जाएं।
5: We cannot talk about the rise of anti-Semitism, the undoubted rise of anti-Semitism, without also talking about the way in which this is part of increasing and unpleasant examples of racist attitudes in Australia, particularly directed, I think, against Muslim communities and against Indigenous Australians. And I would hope that Muslim Australians and Indigenous Australians are called before the Commission, because I think it's really important that their views on this are included in the final outcomes.
0: इस बीच इस्लामोफोबिया से जुड़े बढ़ते मामलों पर भी कई रिपोर्टें सामने आई हैं। इस्लामोफोबिया रजिस्टर ऑस्ट्रेलिया की 2023-24 की हालिया रिपोर्ट में इस्लामोफोबिक घटनाओं में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अवधि में आमने सामने होने वाली 309 घटनाएं रिपोर्ट की गई, जो पिछले वर्षों के औसत से दोगुनी से भी अधिक है। इसी दौरान 2025 इस्लामोफोबिया इन ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट में अब तक के इतिहास में इस्लामोफोबिक घटनाओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। लेबनीज मुस्लिम एसोसिएशन के प्रवक्ता और सचिव जमेल खेर का कहना है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से रॉयल कमीशन से इस्लामोफोबिया के मुद्दे को शामिल करने की बात की है, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
6: Look, I'm on public record as stating that it's too restrictive from the very outset. Prior to the actual government calling for the Royal Commission, we were supportive of a Royal Commission, but we were very, very strongly recommending or requesting that it should be way more broad in the sort of scope of what it looks at. Statistically, Islamophobia has always been a more prevalent than any other form of racism in Australia, yet it's not been looked at directly. Look, I think it's far too restrictive.
0: उन्होंने ये ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया पर विशेष दूत द्वारा संसद में सिफारिशें पेश किए जाने के बाद से सरकार चुप है, जो एंटीसेमिटिज्म पर विशेष दूत की सिफारिशों के प्रति उसके समर्थन से बिल्कुल विपरीत है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी की सरकार ने 20 जनवरी को नफरत और उग्रवाद से निपटने के लिए कई कानून पारित किए, जिन्हें कम्बैटिंग एंटीसेमिटिज्म हेट एंड एक्सट्रीमिज्म एक्ट 2026 नाम दिया गया। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर गन बायबैक योजना स्थापित करना और हिंसक उग्रवादी सामग्री के आयात निर्यात को लेकर नए आपराधिक अपराध शामिल करना है। इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए अटॉर्नी जनरल्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया, लेकिन प्रकाशन के समय तक कोई जवाब नहीं मिला था। SBS न्यूज से कैटरीना स्टेराट की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृशाली चैन ने।
7: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
8: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
7: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए 7 दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
9: SBS South Asian

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
2: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां। SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
4: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और हमारा नंबर अभी भी ओपन है 0439-799-767। इस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद एक नई हैबिट या नई एक्टिविटी कौन सी आपने शुरुआत करी। जैसे कई लोग स्विमिंग सीखते हैं अलग अलग उम्र में, कई लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं। आपका क्या रहा नई एक्टिविटी जिससे आपने अपने आप को बिजी रखा, एक्टिव रखा? 0439-799-767 हमारा नंबर है। और अपना आप कोई संदेश भी भेज सकते हैं, अपना नाम जरूर लिखना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। जब तक आपके मैसेजेस आते हैं, मेलबर्न के रोविल स्थित भारतीय सामुदायिक केंद्र से 400 किलो की महात्मा गांधी प्रतिमा की चोरी के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार ने अपनी 40 साल पुरानी गांधी प्रतिमा दान कर दी है। परिवार ने चोरी की घटना पर दुख जताते हुए उम्मीद जताई है कि उनका यह उपहार भारतीय समुदाय में एकता को मजबूत करेगा। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जो आपके लिए लेकर आई हैं नताशा कॉल।

SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और आगे बढ़ते हैं। एक गाना आपके लिए प्ले करेंगे और उस गाने के बाद वापस आऊँगा एक एड ब्रेक के बाद। मुलाकात होगी फिर से एक आखिरी रिपोर्ट के लिए और फिर कुछ और गाने। सुनिए गाना, एंजॉय करिए SBS हिंदी पर। आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द।

0: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
1: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है Alexa, Google Home या Apple स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
0: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
2: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
3: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
4: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और शो की एक आखिरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के एक गाँव के मनीष डे, जो सिविल इंजीनियर हैं लेकिन कला के प्रति उनका झुकाव रहा, उन्होंने बिना किसी स्टूडियो या ट्रेनिंग के खुद ही एनिमेशन सीरीज़ बनाई है और इस एनिमेशन सीरीज़ को बहुत पसंद किया जा रहा है और अब वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए सुनते हैं फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में।
5: पश्चिम बंगाल के एक गांव में रहने वाले मनीष डे ने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन उनका दिल आर्ट्स में बसता था। उन्होंने खुद से सीखा, ना कोई स्टूडियो ना कोई स्पेशल ट्रेनिंग, एक एक फ्रेम खुद बनाया, सब कुछ अपने आप किया और उसी गांव में बैठ करके उन्होंने एक एनिमेशन सीरीज लोगों के सामने रखी। उसके बाद क्या हुआ, वो एनिमेशन सीरीज इतनी पसंद की गई कि हजारों लोगों ने पैसे देकर उसको सब्सक्राइब किया। मनीष ने ये पहल किसी और वजह से की थी, पर अब वो इसके अगले एपिसोड की तैयारी में लग गए। सोचिए, एक छोटे से गांव में रहकर बनाई गई एनिमेशन सीरीज इतनी पसंद की गई कि मनीष ने उसके आगे के एपिसोड बनाने शुरू किए। पैसे की दिक्कत थोड़ी कम हुई तो मनीष ने एक टीम बना ली और इस एनिमेशन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी बड़ी ही रोचक है। मनीष एक लोअर मिडिल क्लास से हैं और जैसे होता है इनके और इनके परिवार की इनसे बहुत सारी आशाएं थी। मुश्किलों में पढ़ाई की, घर वाले इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, मनीष का आर्ट्स की तरफ झुकाव था। इन्होंने इंजीनियरिंग और आर्ट्स दोनों का टेस्ट दिया, इंजीनियरिंग का रिजल्ट पहले आया, इनको उसमें एडमिशन लेना पड़ा। हालांकि इनको आर्ट्स कॉलेज में भी प्रवेश मिला लेकिन उसका रिजल्ट देर से आया और दो जगह की फीस ये नहीं दे सकते थे। इन्होंने आर्ट्स के प्रति अपनी लगन जारी रखी, सिविल इंजीनियरिंग भी करते रहे। शुरुआत में इन्होंने अपने गाँव में तमाम छोटे छोटे कलाकारों के सामान को दुनिया के सामने लाने के लिए एक वेबसाइट बनाई, सीधे कलाकारों को बाजार तक पहुंचा लिया। पूरे देश से इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने धड़ाधड़ इनके सामानों को लेना शुरू किया। मनीष थोड़ा प्रोत्साहित हुए, उसके बाद इन्होंने सोचा कि इस प्रयास को इसका विज्ञापन किया जाए और इन्होंने इन्हीं कलाकारों के ऊपर एनिमेशन सीरीज शुरू कर दी। पहला एपिसोड सिर्फ 2 मिनट का, उसके बाद दूसरा। कलाकारों की कहानी, ये एनिमेशन सीरीज इतनी ज्यादा पसंद आई कि मिलियन व्यूज आ गए, लोग पेड सब्सक्रिप्शन लेने लगे। अब इनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि इनको ये एनिमेशन सीरीज आगे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ा। आप इस एनिमेशन सीरीज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगले एनिमेशन सीरीज की मांग होने लगी। जो कुछ भी पैसा आया वो इसी में लगाने लगे और आज छोटे से गाँव में शुरू हुई इनकी ये एनिमेशन सीरीज के पास अपनी एक टीम बन गई है जो इस पर काम कर रही है। मनीष अपनी इस कहानी के बारे में बताते हैं।
6: मेरा नाम मनीष है और मैं बंगाल के एक छोटे से गांव गैरकाटा में रहता हूँ और ये जगह पड़ता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटा सा गांव है, 5 से 6 हज़ार लोग रहते इधर और मैं इधर से ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई इधर की है लाइक उसके बाद मुझे दूसरे शहर में मेरी साइंस की पढ़ाई के लिए जाना पड़ा था। मैंने 11th 12th जलपाईगुड़ी से किया। उसके बाद उस टाइम पे मैं आर्ट से बहुत ज़्यादा संयुक्त हो चुका था और मैं आर्ट में बहुत ज़्यादा काम भी करता था। उसी टाइम में मेरा मतलब जेई का भी प्रिपरेशन मैं कर रहा था एंड उस टाइम पे ही मैंने जेई और आर्ट दोनों पे मतलब जितना हो सके उतना काम किया और आगे जाके मैंने दोनों के लिए एग्ज़ाम दिए थे। जैसे मैंने जेई के लिए मैंने पढ़ाई जो की थी वो तो की थी, बट 12th आते आते मेरा मतलब पूरा का पूरा फोकस आर्ट पे ज़्यादा आ चुका था। उसके बाद मैंने कोलकाता के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में ट्राई किया था एंड मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं आर्ट के लिए परस्यू करूँ या फिर कुछ भी करूँ, क्योंकि उनको लगता था कि आर्ट में कोई फ्यूचर नहीं। तो ऐसे ही करते करते मैंने पापा से ज़िद की कि मुझे आर्ट कॉम्पिटिशन में देना है, आर्ट एडमिशन के लिए देना है। तो उसके बाद पापा ने अनुमति दी और लास्ट डे पे जहाँ पे मेरा कोलकाता में एडमिशन टेस्ट था उसके पहले दिन ही हम जनरल कमरे में जनरल स्क्रीन पे जाके उधर मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा मतलब वो जो रिजल्ट आना था वो बहुत बाद ही आना था, इंटरव्यू का कॉल आना था आर्ट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, एंड उसके पहले ही मेरा जेई का रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पे। और छोटे घर का लड़का हूँ, फैमिली की उतनी हैसियत नहीं कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सके। तो मेरा उस समय जब हो गया मेरा सिलेक्शन तो घर वाले बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी से 2 दिन के अंदर ही मेरा एडमिशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पर करवा दिया था एंड घर पे खुशी का माहौल था। 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया आर्ट कॉलेज का भी एंड उस आर्ट कॉलेज पे भी मेरा इंटरव्यू का कॉल आया था कि आप भी सिलेक्ट हो गए हो 5,000 लोगों में से। उसके बाद ऐसे ही करके मेरा आर्ट तो कॉलेज का सपना जो था वो टूट गया था, लेकिन आर्ट मेरे अंदर था। और उसी टाइम पे मैं आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम करता था और आर्टिस्ट जो जो मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती है वो भी मैं झेल रहा था। मैं खुद एक आर्टिस्ट होने के बावजूद भी मैं अपने आर्ट को आर्ट से कुछ पैसे कमाना ये करना नहीं कर पाता था। तो वो प्रॉब्लम जब मुझे इतनी भाती थी तो मैंने सोचा है कि उसको सॉल्व करना है मुझे। तो उसके बाद मैं कॉलेज पे आया एंड एज कॉलेज पे आने के बाद मैंने कोडिंग से लेके टेक्नोलॉजी के बारे में और भी पढ़ाई वढ़ाई की एंड मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, बट मेरे को ज़्यादा भाती थी कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। क्लासेस एंड जो कोर्सेस मैं करता था ऑनलाइन वो सभी के सभी मैं ट्राई करता था कि मैं कंप्यूटर्स एंड कोडिंग उसके रिलेटेड ज़्यादा करूँ। एंड एक साल के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा एंड कोडिंग से रिलेटेड जितना हो सके उतना सीखा। एंड उसके बाद इंडिया में इतने सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब इतना आर्ट एंड हैंडमेड क्राफ्ट करते हैं लेकिन वो कहीं सेल नहीं कर पाते और अपना जो काम है उसके लिए कुछ पैसा नहीं कमा पाते। ऐसे ही करके इंडिया में पहले जितने सारे आर्टिस्ट थे वो कम होते होते बहुत कम होते जा रहे, क्योंकि वो लोग अपना फैमिली नहीं चला पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे अपने हाथों की कला के थ्रू। तो मैंने सोचा इन जो आर्टिस्ट है ना इनको एक जगह मिलनी चाहिए। जो मैं प्रॉब्लम फेस करता था वो और किसी को मैं फेस करने नहीं देना चाहता था। तो ऐसे ही करके कॉलेज के सेकेंड ईयर पे उठते उठते मैंने मेरा एक वेबसाइट लॉन्च किया, वो था हार्ट मिक्स, जहाँ मेरा मेन मोटिव था कि ये जो छोटे छोटे आर्टिस्ट है जो अपने घर के कोने पे बैठ के आर्ट करते हैं, अपने काम को लेके इतने पैशनेट हैं, उनकी जो कला है वो इंडिया के हर घर पे पहुँचे और लोग उनकी कला को कदर करें और उनके नाम बने। ऐसे करके अपने ही गांव से 3-4 जो महिला थे, 3-4 महिला ने शुरू किए थे, वो क्रूशे का काम या फिर हैंडमेड क्ले का चीज़ें, ज्वेलरीज ये सब बनाते थे। एंड उसके बाद इन लोगों से लेके इंडिया के कॉर्नर से बहुत सारे लोगों ने हमारा वेबसाइट ज्वाइन किया एंड ये लोग इंडिया के कॉर्नर्स गुड़गांव से, दिल्ली से, केरला से, तमिलनाडु, बेंगलोर सब जगह से धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे। एंड उन लोगों को हम क्या करते थे, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे लोग फैक्ट्री मेड कंपनी के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, हमारे वेबसाइट में बस आर्टिस्ट के हैंडमेड प्रोडक्ट सेल होते हैं, एंड वो पूरा का पूरा एक आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म बन गया था कि जो भी आर्टिस्ट इधर आएंगे, जो भी अपने हैंडमेड आर्ट के थ्रू अपना पैसा, अपना फैमिली चलाना चाहते हैं, वो आएंगे, उनको एक जगह मिल सके कि आर्टिस्ट अपने आर्ट को सेल कर सके। और ऐसे करते करते छोटे से लेके बड़े तक, लाइक हमारे अभी 63 इयर्स की ओल्ड लेडी भी काम करती है हमारे साथ, वो भी अपने आर्ट से बहुत अच्छा ही अपना घर चला रही है, खुद खुश है और नाम कमा रही है।
5: कैसे मनीष का झुकाव एनिमेशन सीरीज की तरफ हुआ है? उन्होंने एनिमेशन सीरीज को क्या सोचकर बनाया था और एक छोटे से गांव में बनाई गई ये एनिमेशन सीरीज इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई और इसकी और इसके एपिसोड्स की डिमांड आने लगी? मनीष बताते हैं।
6: हाँ, तो ये जो आर्टिस्ट थे, ये आर्टिस्ट मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए थे, हमारा आर्ट पीस को 8 महीने हो चुके थे और हमने कोई प्रमोशन कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि लोग प्रमोशन जो करते फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, वो होता है एकदम एड बेस्ड या फिर कोई उसमें जान नहीं होती एक आर्ट की। तो एक आर्टिस्ट के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए और उसको लोगों तक लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आर्ट ही होगा। तो हमने चूज किया कि क्यों ना एनिमेशन के थ्रू इनको और सामने लाया जाए। तो इससे शुरुआत हुआ हमारे फर्स्ट होन एनिमे का। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, जितना हो सके मैंने ट्राई किया कि मैं खुद कुछ कर सकूं। तो उसमें हमने पहले 2025 में हमने एक लॉन्च किया 2 मिनट का क्लिप, जो कि हैंड ड्रॉन प्लस AI दोनों से मिला के हमारा एक एपिसोड बना। एंड उसके बाद लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमें आगे जाके एक और एपिसोड बनाना पड़ा। उस एपिसोड से भी इतने सारे लोग जुड़ गए, मिलियंस ऑफ लोगों ने इतना पसंद किया, हमें अब इसके लिए अलग से टीम रखनी पड़ी।
5: अब कुछ बात इस एनिमेशन सीरीज की कहानी के बारे में, क्या है, कैसी है। मनीष ने कोलकाता की पृष्ठभूमि में एक कहानी लिखी और उसी पर यह एनिमेशन सीरीज बनाई थी।
6: नाम इसका फर्स्ट होन है। एक्चुअली ये हमारे एक आर्टिस्ट की लाइफ को दर्शाने के लिए

0: 10,000 से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब किया और देखा, तभी मैंने बहुत कम प्राइस रखा था, 19 रुपए। और प्राइस रखने का ये मतलब नहीं है कि मुझे इससे बहुत पैसे कमाने हैं इसलिए मैं प्राइस रख रहा हूँ। प्राइस रखने का मतलब है कुछ चीजों को दाम मिलना चाहिए, कुछ मूल्य मिलना चाहिए। अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे करके। इसलिए जैसे फर्स्ट एपिसोड में इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद उसी पैसे से हमने नेक्स्ट एपिसोड बनाया, एंड नेक्स्ट एपिसोड में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और अभी हम पूरी टीम के साथ, हमारी अभी से 6-7 लोगों की टीम है, अभी हम 6-7 लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड पे काम कर रहे हैं। लोगों का सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम आगे भी एपिसोड ऐसे लाते रहेंगे।
1: मेहनत और लगन से किए हुए काम में सफलता अवश्य मिलती है, मनीष इसका उदाहरण है। लखनऊ से फैसल फरीद।
2: SBS हिंदी पर अब मैं नवील आपसे लूंगा इजाजत एक आखिरी गाना प्ले करते हुए, लेकिन उससे पहले पीयूष जी का नमस्ते, जिनका मैसेज आया है सॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ, जो आज प्ले करना मुश्किल है लेकिन हमने नोट जरूर कर लिया है। एंजॉय करिए ये आखिरी गाना, आपसे मिलूंगा बहुत जल्द, सुनते रहिए SBS हिंदी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ।

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: Discover what new music we've added to SBS South Asian by finding us on Spotify.
1: आ गले लग जाओ मेरे यार, तुम्हारा ही इंतजार है, दिल को बेहद तुमसे प्यार है।

लौटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह, तो ढूंढ ना पाओगे प्यारा सा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay, 'cause I want you to stay, 'cause I want you to stay.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।